0: रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किछ तेरा बस तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद कर मन महता तेज अपना अवजार सर्व कला भरपूर सजत कथा नानक दसन दास तुदे आगे बिनवता।
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दया खेलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया।

ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तर जाकी शोत जगत को लागे, तो पर तो ही डर नीच ऊच करे मेरा गो।

कालपय ब्रह्म अवतरा कालपय शिवजू अवतरा कालपय कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनाया देव दैत जशन उपजाया आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिवगुन सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत ईटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब बुध करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं जेते बदन सृष्ट सब तारै आपे अपनी बूझ उचारै

निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। कुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। पंडज जेर जिसे तज कीनी, कुज खान बहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, याद जुगाद स्वरूप सजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगर। दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा हुए ताय सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्वत सकै न कोई।

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो चिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो बाहि गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार।

आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईयां, शब्दों ता गावहु हरि के राग, मन जिने वसाया।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जी को खावै जी को पुंचै तिसका हुए उदारो यह वस्त तजी नह जाई नित नित राख और तारो

जब व्योर न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन किया इनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया ए पद्धत ते मत

प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जन कै पर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। कंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले। चकवी सूरज हित है मिल होन सुखाले। निहो कवल जल जानिए फिड़ मोह वे खाले। मोर बबीहे बोल दे

संत टहल की बेला, ईहा खाट चलहो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद कट है दिन सरैना रे, मन गुरमिल काज सवारी रहाउ। इह संसार विकार संसीम है, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाई पिया वै इह रस, अकथ कथा तिन जानी। जा कौ आए सोई बिहाज हो, हर गुर ते मन है बसेरा, निज घर महल पावह सुख सहजे, बाहुर न

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लाख करोड़ सच्चा सप्तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे है सो कचन कच महला पहला
1: वडी वडियाई जा वडा ना वडी वडियाई जा सच निया वडी वडियाई जा निश्चल था वडी वडियाई जाने आला वडी वडियाई बुझे सब भाओ वडी वडियाई जा पुछन दात वडी वडियाई जा आपे आप।

पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ गड्डी है खात पड़ी है जदे बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जदी आर जा पड़ी है जेते सास नानक

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्य कूड़ बे पूर, नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सच ता पर जानिए जारी दे सच्चा होए, कूड़ की मल तुरे तन करे हछा तोए, सच ता पर जानी जा सच तेरे प्यार, नाउ सुन मन दसिए ता पाए मुख द्वार, सच ता पर जानी जा जुगत जाने जियो, धरत काया साध के विदे करता बियो, सच ता पर जानी जा सिख सची ले, दया जाने जी की किछ पुन दान करे, सच ता पर जानी जा आत्म तीर्थ करे निवास, सत गुरु नु पुछ के वह रह करे निवास, सच सबना होए दारू।

0: ताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवे दाल जेक होए ताऊ गवैरती हुलत होए नानक पाहे बाहरा पूरे रंग न सोए पै विच हुम चढ़ाई है शर्म पाहो तन होए नानक भक्ति जे रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
1: लब पाप दे राजा महता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सद पुछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाहे परे मुर्दा ज्ञानी नचे बाजे बावे रूप करे सिगार ऊचे कुक है वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत जो संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवा वह मंगे मोख द्वार जति सदा वह दुख न जाने छड़ वह करवा सब को पूरा पे होवे घट ना कोई आख है पत प्रवाणा पिछे पाई है ता नानक।

तारन तरन सम्रत काल युग सुनत समाज शब्द सकेरे कुन दुखन नाथ दुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसते नेरे पूरो पुर हृदय हर सिमरत मुख देखत।

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी पट्टी है सज्जन।

0: अत दीर्घत मुच ओए जे अभ्यास कर जा इंद्रा से कित फल फिके फुल बक बके कामना आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोए धरता राजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मृगा हे सीसनी वह क्या थी है जारी दे कुसु दे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन शिल्पू जिस बगल समादम मुख चोट विभूखन सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्राह्मण करवन सब फोकट नेचो करवन कहु नानक नेचो त्यावे।

0: न जाई धोती टिका जप माली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बस जम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लये जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास छुरी बगाएं तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पियावे उसार कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म तरम कड़े रा दूर नान कूड़ रहे आ भरपूर मथे टिका तेर धोती तो खाई हथ श्री जगत का साई नील वस्त्र लह नील वस्त्र पर हो प्राण मलेश तान ले पुझे प्राण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके पर किसे न जाना।